सो वेलकम बैक, इट हैपेंस मी सताक्षी के साथ हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ आपके अपने इस ब्रेकफास्ट शो को। वैसे अपनी बात कहते कहते हम अचानक छोड़ क्यों देते हैं? कभी कभी हम किसी से बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, शब्द होठों तक भी आते हैं, लेकिन फिर अचानक कहते हैं अरे छोड़ो यार, तुम नहीं समझोगे। कभी इसलिए कि सामने वाला शायद समझ ही नहीं पाएगा, और कभी इसलिए कि समझाते समझाते हमारे पास खुद ही शब्द नहीं बचते। कई बार मन बस शांति चाहता है, और कई बार लगता है कि जिस बात को हम दिल से कहेंगे कहीं वही बात हल्की ना कर दी जाए, इसलिए हम अपनी अधूरी बात को एक छोटे से शब्द में समेट देते हैं, छोड़ो। और शायद आप भी कभी अपनी कोई बात कहते कहते बस इतना कह देते होंगे छोड़ो यार, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उस छोड़ो के पीछे कितना कुछ अनकहा रह गया है ना। अगर ये सच है तो ये गाना आपके लिए ही है। इंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, और इस गाने को सुनकर मत कहिएगा छोड़ो यार।

वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो प्रस्मानी 1701 एम पर। कभी कभी हमें किसी इंसान की नहीं बस अपने पुराने वाले खुद की याद आती है, वो हम जो कहां चले गए। छोटी छोटी बातों पर हम हंसते थे, थोड़ी सी खुशी में पूरा दिन खुश रह लेते थे, कभी किसी बात को इतना दिल पर नहीं लेते थे। और आज हर बात के बाद खुद को समझाना पड़ता है, ना जाने कब ये जिंदगी हमें इतनी बदल गई। पहले जो दिल खुलकर मुस्कुराता था, अब वही मुस्कुराने से पहले सोचने लगा है। कभी कभी बहुत मन करता है कि सब कुछ देर के लिए छोड़कर वापस कहीं चले जाएं, जहां हम सिर्फ खुश रहने की कोशिश नहीं करते थे, हम सच में खुश हुआ करते थे। और फिर आईने में खुद को देखकर बस इतना सवाल रह जाता है कि जिंदगी मुझे सब कुछ तो दे दिया, लेकिन मेरा वो पुराना वाला मैं कहाँ छोड़ आई। और उसी मैं के नाम आइए सुनिए मेरे साथ ये अगला ट्रैक और सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी पर इट हैपेंस। और आगे बढ़ते हैं आपकी मॉर्निंग वाले एहसासों के साथ।

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

दोस्तों, कुछ रिश्तों में प्यार जताना नहीं पड़ता है, बस एक आवाज ही काफी होती है। भाई की आवाज में जरा सी परेशानी हो तो बहन का दिल बेचैन हो जाता है, और बहन की आंखों में एक भी आंसू हो तो भाई का दिल भी चुप नहीं बैठता। दुनिया के कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एहसास से, शब्दों के एहसास से आप ये गेस कर सकते हैं कि सामने वाला खुश है या किसी परेशानी में है। और यही रिश्ते जो होते हैं, ये दिल के रिश्ते होते हैं, जहाँ निभाना जबरदस्ती का रिश्ता नहीं होता, जहाँ निभाना खुद अपने लिए प्यार को बढ़ाना होता है। और ऐसे ही रिश्तों के नाम, चलिए एक अगला ट्रैक सुनिए और सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

कभी कभी कोई इंसान ना बेवजह बहुत याद आता है, ना कोई बात हुई होती है और ना ही कोई मुलाकात, फिर भी अचानक उसका नाम, उसकी आवाज या उससे जुड़ी कोई छोटी सी बात दिल में उतर आती है। वो कहते हैं ना कि शायद यादें कभी पूरी तरह एक तरफा नहीं होती। हो सकता है किसी पल हम भी उसकी यादों में उतरते हों, अच्छे रिश्ते हों या बुरे। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन दिमाग से नहीं निकलते, पर कुछ एहसास कभी खत्म नहीं होते।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Baby, con बेस पसंद है।
1: यू नो, कभी गौर किया है, कुछ नाम सिर्फ फोन पर नहीं सीधे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। फोन पर कितने ही नाम होते हैं, लेकिन कुछ नाम स्क्रीन पर आते ही हमारा चेहरा हमसे पहले खुश हो जाता है। ना कोई बड़ी बात, ना कोई खास खबर, बस नाम दिखा और मन ने चुपके से कहा, अच्छा है ये। शायद कुछ लोग हमारे फोन में कॉन्टेक्ट में नहीं होते, वो हमारी छोटी छोटी सी खुशियों में होते हैं। अब जरा अपने फोन को देखिए, कौन सा नाम है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी बिना वजह मुस्कुराहट आ जाती है।

वेल फ्रेंड्स, ये था आज इट हैपेंस का सताक्षी का आपके साथ साथ। आई होप कि आज ये एहसास आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। तो कल फिर से एक बेहतरीन सुबह की बेपरवाह बातों के साथ आपसे मिलूंगी इसी सफर इट हैपेंस में। आज के सफर से अब दीजिए इजाजत। मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदगी को जीते रहिए और जिंदगी से भरते रहिए। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भैया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउन डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वाने एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए हो। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। ओ फिल्म दा नाम हैगा मसान। नीरज घायवान दी जैप्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्डा बने सी ते दीपक जो विकी कौशल बने सी दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उत्थे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: पे हाँ हीरो की
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस
3: बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल

0: phone number carried beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
3: They secret.
4: ਹੋ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਕਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ਠੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਖ

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बने हुए। इस तो बाद अगला जिहड़ा नाम है इस लिस्ट विच ओ है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नूं करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्गिया हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दस दिंदी आ, ओह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध दी कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद कीता गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे ते सुरविंद चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच है कि नहीं। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ग्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ग्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री

0: बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।
1: अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस

0: ट्रस्ट।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: सर्गम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले On the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 PM onwards. For tickets, contact 04227

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। हैप्पी वेडनेसडे आप सभी को। मिड वीक आ गया है और हम भी आ गए हैं। जी हाँ, लेकिन अकेले नहीं आए हैं, आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें गाने आपकी पसंद के होने वाले हैं। जी हाँ, कुछ मेरी भी पसंद के होंगे, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ आपकी पसंद का थोड़ी होगा, थोड़ा आपकी आरजे निव्या की पसंद का भी होगा। जस्ट किडिंग, सब कुछ आपकी पसंद का होगा, सब कुछ आपको एंटरटेन करने के लिए होगा और गपशप होगी, बहुत सारा फन होगा। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत ऐसे रूखी सूखी तो नहीं करते हम। जी हाँ, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्दी रिचुअल के साथ। वो कहते हैं ना, सारी अच्छी चीजें शुरुआत में ही कर लेनी चाहिए, सो वही हम भी करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। तो आइए सबसे पहले डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमें काम, फोकस्ड और एकदम इमोशनली इंटेलिजेंट रखता है। सो लेट्स जस्ट डू इट। क्या बात, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। जी हाँ, ये गाना सच में बहुत खूबसूरत है और पिछले साल का बहुत ही ज्यादा हिट गाना भी है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट वेहानिया वे दिल जानिया। जी हाँ, और पिछले साल से ज्यादा पुराना है इनफैक्ट ये। सो ऑफकोर्स हम ये गाना सुनेंगे और उसके बाद हम बहुत सारी और भी गपशप करने वाले हैं। सो उसके लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि राइड पर सवार होने का वक्त आ गया है। अभी नहीं तो कब, राइट? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेहानिया से और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, तो अब जरा चले सीधा मौसम का रुख करते हैं। भाई अब प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है तो मौसम के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि दिन की शुरुआत हो या प्लानिंग की शुरुआत हो, मौसम को मद्देनजर रखना पड़ता है। जी हाँ, सो ऐसे में आइए वही कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के करीब हो गया, और अभी की अगर बात की जाए तो 24.4 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 23.9 डिग्री सेल्सियस के करीब, बट आप थम जाइए, रुक जाइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं कि आगे जो मौसम है वो और भी ज्यादा गरम गरम और काफी गरम जो है वो होने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ ये तो थी रात की बात, अब जरा दिन की बात करते हैं। दिन की बात हो गई है, रात की बात करते हैं। तो 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे। बारिश के चांसेस थे नहीं, 10% जो कि ना के बराबर थे, बिल्कुल ना के बराबर, और एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। जी हाँ, तो ये हुई आज की बात। अब जरा चलते हैं थर्सडे और फ्राइडे की तरफ। मैंने कहा था कि गर्मी बढ़ने वाली है थर्सडे से, और यही होने वाला है। 31 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया जा सकता है कल, और परसों 33 डिग्री सेल्सियस। आप लोग बोलोगे कि एलोजी, हमें तो पता ही नहीं चला एकदम से गर्मी आ कब गई, मतलब स्प्रिंग आया, लेकिन अभी स्प्रिंग तो स्प्रिंग फीलिंग में ही था, लेकिन यहां पर गर्मी जो है उससे पहले आ गई। वेल, मुझे भी नहीं पता चला, सो यू नो व्हाट, दैट इज द केस। इसी के साथ कल जो है 31 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ नो चांसेस ऑफ बारिश, और पूरी तरह से सूरज आसमान में चमचमाता हुआ आपको नजर आने वाला है। वहीं फ्राइडे की अगर बात की जाए तो 33 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ अगेन नो चांसेस ऑफ बारिश, जी हाँ 10% जो कि ना के बराबर है, और मौसम एंड सूरज चमचमाता हुआ आपको नजर आएगा। सो बेसिकली गर्मी के लिए रेडी हो जाइए, और मैंने तो कल ही कहा था कि गर्मी आ रही है उसका मतलब क्या है, मैंगो सीजन आ रहा है, तो आई एम एक्साइटेड, आई यू? जी हाँ, इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है तो जरा आपकी फरमाइशों की बात भी हो जाए, यानी कि वही गाने जो आपको अजीज हैं और आप हमारे इस प्रोग्राम में रिक्वेस्ट कर सकते हो, डेडिकेट कर सकते हो किसी को, जी हाँ उन्हें स्पेशल फील करवा सकते हो। सो व्हाट यू गोना डू इज आप अपना फोन उठाने वाले हो और एक नंबर आपको डायल करना है और वो नंबर है +9182888717701। आई रिपीट +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं अपनी फरमाइश हमारी तरफ से एक और बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, तो जिस कंपटीशन के बारे में हमने पहले भी बात की थी, वो कंपटीशन फिर से सुर्खियों में आ गया है। जी हाँ, एक ऐसा कंपटीशन जहां पर आपको कंटेस्टेंट नहीं बनना है बल्कि जज बनना है, और आपको जज करना है तिरामिसू के टेस्ट को। जी हाँ, अब अगर आप लोगों ने कभी तिरामिसू ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई कीजिए। इट्स अ फेमस इटालियन डेजर्ट जो कि आपको बहुत सारी फीलिंग्स जो है वो दिलाने वाला है। मतलब इट्स यमी, बट कुछ लोगों को ये यमी नहीं भी लगता है। जी हाँ, बिकॉज आई नो सम पीपल जो इसे इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन देन देयर आर मेनी पीपल जिनको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब आप लोग बोलोगे कि निविया मतलब क्या सा कॉम्पिटिशन है जहां पर कॉन्टेस्टेंट नहीं बनना है, जज बनना है, तिरामिसू के टेस्ट को जज करना है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वेल, अगर आप मेरे इस प्रोग्राम को सुनते हो तो शायद आपने पहले भी मुझे इसके बारे में थोड़ी बात करते हुए सुना होगा। जो 2026 का एक तिरामिसू कॉम्पिटिशन है, एंड इट्स नॉट जस्ट अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ तिरामिसू वर्ल्ड कप इन ट्रेविसो, इटली। जी हाँ, बिकॉज इट्स अ इटालियन डेजर्ट, सो ऑफकोर्स इटली में ही इसका कॉम्पिटिशन और वर्ल्ड कप होने वाला है। सो तिरामिसू लवर्स के लिए जो कि अराउंड द वर्ल्ड है, वो लिटरली ये चांस जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, वो जज बन सकते हैं at this year's tiramisu world cup in Treviso, Italy. जी हाँ, मतलब आप इटली भी घूम सकते हो, और इटली घूमते घूमते आपको लगेगा वाह वाह वाह, फ्री में तिरामिसू मिल जाए खाने को तो क्या ही बात होगी, तो ऐसा कीजिए जज ही बन जाइए यहाँ का। जी हाँ, सो एप्लीकेशंस फॉर द 130 पब्लिक ज्यूरी स्पोर्ट्स ओपन ऑन सितंबर 12। जी हाँ, सितंबर 12 को इसकी एप्लीकेशन जो है वो 10 बजे से खुलने वाली है, तो अपनी एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। और अगर आप इटली जाने का प्लान कर रहे हैं अक्टूबर के अराउंड, तो मैं तो कहती हूँ कि तिरामिसू का जज भी बनना कोई बुरी बात नहीं है। आई मीन तिरामिसू वर्ल्ड कप का जज, आई मीन दैट्स गुड सीट, राइट? एंड इफ यू लाइक तिरामिसू, फिर तो मतलब आपको रुकने का कोई भी बहाना नहीं है आपके पास। सो जैसे मैंने कहा कि 12th ऑफ सितंबर से 10 बजे से ये खुल जाएंगी, एंड जिनको टेस्ट का जो ये होपफुल टेस्टर्स जो होंगे उनको लिटरली 15 क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट जो है वो देना होगा, और उसके बाद जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब लिटरली अभी अपने घोड़ों को जरा थाम लीजिए, क्योंकि ये जो कंपटीशन है इसमें आप सिर्फ जज बन सकते हैं। दे आर नॉट गना पे यू एनीथिंग। जी हाँ, मतलब वो जो भी कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से आ रहे हैं उनको कोई भी पेमेंट नहीं करने वाले हैं इटली या ट्रेविसो या वर्ल्ड कप वाले, वो उनको रहने के लिए जगह भी नहीं देने वाले हैं। जी हाँ, सो ये सारी की सारी चीजें लोगों को खुद ही करनी होंगी, और बाकी जो इकलौती चीज ये करने वाले हैं वो ये है, आपको जज बनाने वाले हैं, और आपको फ्री में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स का तिरामिसू खाने को मिलेगा। मतलब यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट, आई थिंक इट्स अ फेयर डील। आई डू थिंक इफ यू आर अ तिरामिसू लवर देन दैट्स अ ग्रेट डील, बट इफ यू आर नॉट फिर आपको ऐसा लगेगा अरे पे करते तब तो बात थी, फिर हम जाते भी। जी हाँ, सो या जैसे मैंने कहा कि ये सैंपल जो है वो स्कोर किए जाएंगे, उनके स्कोर किए जाएंगे तिरामिसू के, और कंपटीशन के लिए क्वालिफायर जो है वो किया जाएगा अक्टूबर 9 और 10 को। जजिंग जो है वो होगी बोथ ट्रेडिशनल एंड क्रिएटिव वर्जन ऑफ बिलव्ड इटालियन डिजर्ट, जैसे मैंने कहा। और या मतलब आप जज बन सकते हो 12th ऑफ सितंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन खुल रही है। मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको 15 क्वेश्चंस का आंसर देना है, और अगर आप ये सब कुछ कर देते हो तो आप इटली भी जा सकते हो, और इटली जाकर आप तिरामिसू टेस्ट भी कर सकते हो। अगेन मैं फिर से कहूंगी, आपको फ्री में इटली कोई नहीं बुला रहा, यू हैव टू पे फॉर दैट, यू हैव टू पे फॉर योर होटल एंड एवरीथिंग, द ओनली थिंग यू गेट फ्री इज तिरामिसू, दैट्स इट। बट इफ यू आर अ तिरामिसू लवर, आई थिंक दैट्स अ फेयर डील, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू इटली, प्लान इट इन अक्टूबर। या दैट्स ऑल आई वांट टू से। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ एक और चीज जो कि काफी वायरल हो रही है वो है एक आइलैंड, जी हाँ, जो कि कनाडा में देखा गया और इसे मिस्टीरियस आइलैंड कहा गया। जी हाँ, अब आई डोंट नो आपने इसके बारे में सुना है या नहीं सुना है, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले एक व्यक्ति ने वहां पर, जहां पर वो घूम रहा था पानी में, उसने एक आइलैंड को देखा जो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उसके बाद वो आइलैंड गायब हो गया, हंस मिस्टीरियस आइलैंड। जी हाँ, सो एक बहुत बड़ा ट्री कवर्ड आइलैंड जो है वो एकदम से अपेयर होता है। जी हाँ, इस महीने की स्टार्टिंग में, यानी कि अगस्त की स्टार्टिंग में, इन आइसोलेटेड कैनेडियन रिजर्वियर बिफोर कंप्लीटली डिसअपेयरिंग। जी हाँ, एक बोटर ने शेयर की इमेजेस एंड वीडियोस विद लोकल रोकी एवरी और उन्होंने CBC को बताया कि इट वॉज अ प्रीटी अमेजिंग साइट टू सी, नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट इन माई 40 ईयर्स इन दिस कंट्री। अब लोगों को लगा कि ये बंदा जो है वो मजाक कर रहा है, तो जब सैटेलाइट इमेजरी जो है देखी गई लास्ट मंथ की, तो उसने प्रूव कर दिया कि आइलैंड जो था इन विल्स्टन रिजर्वियर वो इनफैक्ट रियल था। मतलब वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा था, वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा था, वहां पर सच में एक आइलैंड आया और वो फिर उसके बाद

आइलैंड जो है वो रियल है। अब आप सोचिए कि आप एक जगह खूबसूरत से ब्लू ब्लू यानी कि नीले पानी में घूम रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या बात है, कितना खूबसूरत सा मौसम है, आपको ऐसा लगता है कि सामने कितनी खूबसूरत सी जगह, कितना खूबसूरत सा आइलैंड दिख रहा है, और वो आइलैंड कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है बल्कि पेड़ों से भरा हुआ आइलैंड है। लेकिन कुछ वक्त बाद वो आइलैंड आपको दिखना बंद हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि कौन से भूतिया वर्ल्ड में मैं एंटर हो गया हूं, व्हाट इन द पैरानॉर्मल वर्ल्ड इज हैपनिंग हियर, दैट्स व्हाट यू आर गोना थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम। बट उसके बाद फिर आपको लगेगा कि ओह माय गॉड, मतलब आप या कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसा कुछ देख रहा है और उसको फिर पता चलता है कि लैंड जो है, मतलब वो आइलैंड जो है वो गायब हो गया, उसको अपनी लाइफ चॉइसेस पर शक हो जाएगा कि मैं आया ही क्यों ऐसी जगहों पर, लाइक लिटरली लुक एट दिस सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग हियर। बट द थिंग इज कि दैट आइलैंड वॉज रियल। साइंटिफिक सिचुएशन यही कहती है कि वो जो आइलैंड है, वो जो पानी था उसने उसको फ्लोट कर दिया दूसरी तरफ, और वो इतना ज्यादा था पानी कि उसने उस लैंड को यानी जो वो जमीन थी उसको जो है वो तोड़ दिया, और उस वजह से वो ब्रेक अवे करके वो वहां से आगे को फ्लोट कर गया, लेकिन वो गायब हो गया उसके बाद। दैट इज अ थिंग इन इट सेल्फ। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, एक और वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पर, और वो है एक व्यक्ति की जो अपेरेंटली एक पाकिस्तानी व्यक्ति है और वो बड़े ही अच्छे से एक सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठा होता है बाजू वाली सीट में, जो ड्राइवर को ड्राइवर सीट होती है उस पर, और वो बड़े ही अच्छे से पाकिस्तान की टेक्निकल टीम का है और टेक्निकल इंडस्ट्री का जो है वो तारीफ कर रहा होता है। जी हाँ, और उसके बाद अभी वो तारीफ चल ही रही होती है कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार एकदम से अपने आप को मोड़ के एक पुलिस वाले की गाड़ी से जाकर टकरा देती है। जब वो टकराती है उसके बाद सामने वाली गाड़ी से एक बंदा निकलता है जो कि ऑफकोर्स पुलिस वाला ही होता है। उसके बाद का वीडियो किसी के पास नहीं है, लेकिन वी डेफिनेटली वॉन्ट टू सी द पुलिस वाला रिएक्शन। जी हाँ, आप लोग बोलोगे है वॉट इन द वर्ल्ड इज हैपनिंग, वेल यही तो मैं सोच रही थी। सो ये वीडियो इतनी ज्यादा फनी है कि अगर आप देखोगे तो आप हंस हंस के गिर जाओगे। दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी। जी हाँ, सो लिटरली बंदा जो है वो तारीफ कर रहा होता है, साइड में बैठा होता है, लेकिन जब वो अपने आप को मोड़ रही होती है तो उस बंदे को पता चल जाता है कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ी कर रही है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा कर नहीं सकता क्योंकि इट्स अ सेल्फ ड्राइविंग कार, और अगर उसने ड्राइव कर दिया सेल्फ ड्राइविंग कार को फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कोई काहे की तारीफ। तो ऐसे में वो गाड़ी जो है वो अपने आप को तारीफ को सुनते सुनते इतनी ज्यादा सातवें आसमान पे पहुंच जाती है कि वो सीधा जाके पुलिस वाले की गाड़ी से अपने आप को टकरा देती है और बोलती है यू नो व्हाट, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है कि हम सीधा और सीधा पुलिस वालों को निशाना बनाते हैं। एंड दैट्स नॉट द पर्सन हु इज सेइंग इट, दैट्स द सेल्फ ड्राइविंग कार ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, एंड द थिंग इज कि ये ड्राइवरलेस कार जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही होती है कि कैसे वो बहुत ही अच्छे से टेक ब्रेक थ्रू कर गई है इन द कंट्री। बट अगेन उसके बाद उस गाड़ी का क्या हुआ, उस बंदे का क्या हुआ, वी डोंट नो, बट वी डेफिनेटली वॉन्ट टू नो एंड वी डेफिनेटली वॉन्ट टू सी द रिएक्शन जब वो गाड़ी ठोकी गई उसके बाद। मतलब इससे मुझे लगता है कि हम लोगों को ना अपने आप को थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा धीमा धीमा ही स्लोली स्टेडली आगे की ओर लेकर जाना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि ऐसे तो वो पुलिस वाले की गाड़ी पर टकराई, लेकिन अगर वो किसी इंसान को ही ठोक देती तो फिर क्या हो जाता, आप खुद सोचिए। अब तो पुलिस वाला सोच रहा होगा कि ये तो मैं बताता हूँ ड्राइवरलेस गाड़ी को भी और उसके बाजू में बैठे ड्राइवर को भी। जी हाँ, आई मीन को ड्राइवर को भी। बट द थिंग इज कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए, बिकॉज यू गोना लाफ सो मच। या यू गोना लाफ सो मच। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Digicel, better together.
5: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
7: Hi, this is Amitabh Bachchan.
8: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
14: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
15: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियाश एनीवे के साथ। दोस्तों इसी के साथ एप्पल में बहुत कुछ चेंज हो गया है। वेल नॉट एन एप्पल आईफोन बट एप्पल एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि कैसे टिम कुक जो है अब वो रिटायर हो रहे हैं और जॉन टर्नर्स उनकी जगह पर नए CEO बनने वाले हैं एप्पल के। वेल वो हो गया है, आपने सही सुना था, और वो आज से हो गया है। अब अगले ही हफ्ते इनका एक प्रोडक्ट लॉन्च है, सो ऑफ कोर्स उनके लिए यानी कि जॉन टर्नर्स के लिए एक रियल टेस्ट है। लेकिन आप लोग बोल रहे होंगे कि कहां से आया ये बंदा एकदम से। वेल ये एकदम से नहीं आया है बंदा, क्योंकि ये 25 साल से एप्पल के साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने एप्पल वॉच, आईपॉड्स, मैकबुक, बहुत सारी iPads जैसी बहुत सारी चीजों में उन्होंने काफी काम किया है और वो बहुत ही अच्छे से एप्पल में इन्वॉल्व रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, और आज से उन्होंने CEO का कार्यभार संभाल लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज सैलरी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द सैलरी। सो जॉन टर्नर्स जो कि नए CEO बने हैं एप्पल के, अपेरेंटली उनकी सैलरी $3 million है। लेकिन दैट्स नॉट जस्ट इट, जी हाँ, उन्हें $55 million स्टॉक इक्विटी, एनुअल इक्विटी जो है वो भी मिलने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब $55 million की एनुअल इक्विटी ऑन स्टॉक्स में उनको मिलने वाले हैं हर साल। 3 million सैलरी तो है ही, लेकिन 55 million इन स्टॉक्स एंड इक्विटी, एनुअल इक्विटी भी उनको मिलने वाला है। एंड आप लोग बोल रहे होंगे कि ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा सैलरी। सो आई होप वो बंदा अच्छे से काम करे और कुछ नया दे आईफोन में, हमेशा की तरह नहीं जैसे इतने सालों से होता आ रहा है। मतलब थोड़ा बहुत हमें दे देते हैं आईफोन में नई नई चीजें, थोड़ी सी, और हमें ऐसा देखा जाता है कि यू नो व्हाट, हमने इतना बड़ा काम कर दिया है, अब तुम और भी ज्यादा पैसे भरने के लिए तैयार हो जाओ। सो अगर नया CEO आया है और वो इतनी अच्छी और ज्यादा और बड़ी सैलरी ले रहा है, तो वो अच्छे से काम भी करे और कुछ नया वो आईफोन में दे, तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। सो लेट्स सी। जी हाँ, सो अगेन, जॉन टर्नर्स इज द न्यू CEO ऑफ एप्पल। लेट्स सी व्हाट ही डज विद द डिजाइन एंड विद द फंक्शन एंड टेक्नोलॉजी इन एप्पल। लेट्स सी। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, आप सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। जी हाँ, अब खबरों की तरफ रुक करने का वक्त हो गया है, तो सबसे पहले शुरुआत होगी नेपाल की खबर से। जी हाँ, नेपाल में पिछले हफ्ते आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा हो गया है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और कहीं ज्यादा और लोग लापता हैं। जी हाँ, सो नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या अभी तक के लिए 1100 के पार हो गई है। नेपाल पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि मंगलवार शाम तक बाढ़ से 1127 शव बरामद किए गए हैं। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है, सैकड़ों लोगों का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है। नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर लापता लोगों की संख्या 4868 है और खोज जारी है। प्रधानमंत्री बालन शाह ने कहा कि सरकार अब तलाशी, बचाव और राहत सामग्री बांटने के बाद प्रभावित लोगों के पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ रही है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान अभी भी जारी है। आशंका है कि लापता लोगों में कई लोग अब भी जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से विदेशी टीमें भी इस अभियान में मदद कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि नदी से मिले अज्ञात शवों को रखने के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई है। अब तक बरामद किए गए शवों में से केवल कुछ की ही पहचान हो पाई है। पुलिस ने बताया कि अगर लापता नेपाली या विदेशी नागरिकों के करीबी, खून के रिश्तेदार डीएनए जांच की मांग करते हैं, तो उनके ताजा खून के नमूने लिए जा सकते हैं। इन नमूनों की मदद से डीएनए जांच के जरिए शवों की पहचान भी की जा सकती है।

जी दोस्तों, ऐसे के साथ खबरों की बात हो रही है और जर्मनी ने रूस पर लगाया एयरपोर्ट पर हमले का आरोप, पुतिन ने दिया जवाब। जर्मनी ने कहा है कि पिछले महीने लिप्ज़िग एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले के पीछे रूस का हाथ था। 4 अगस्त को पूर्वी जर्मनी के लिप्ज़िग हाले एयरपोर्ट पर एक ड्रोन मिला था, इसमें विस्फोटक लगा हुआ था। यह यूक्रेन के कार्गो विमानों के पास था। ड्रोन में विस्फोट नहीं हुआ क्योंकि माना जा रहा है उसका डेटोनेटर खराब था। जांचकर्ताओं को शक है कि एक दूसरा ड्रोन पास में मौजूद एक कार्गो विमान से टकरा गया था। इसके 10 दिन बाद एयरपोर्ट के पास एक तीसरा ड्रोन भी मिलने की खबर आई। जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर डॉब्रिट ने कहा कि लिप्ज़िग एयरपोर्ट पर हुआ हमला यूरोप में रूस की हाइब्रिड गतिविधियों के लंबे समय से चले आ रहे तरीके का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि यह मानकर चलना चाहिए कि जर्मनी को फिर निशाना बनाया जा सकता है। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को जर्मनी पर अकबर आरोप लगाया कि उसने लिप्ज़िग एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने के मकसद से सबूत प्लांट किए हैं। पुतिन ने अपने आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। इस बीच बर्लिन में रूसी दूतावास ने रूस के हमले के लिए जिम्मेदार होने का आरोप को बेतुका बताया है। डॉब्रिट ने कहा कि ड्रोन में इस्तेमाल किए गए उपकरणों की जांच और खुफिया जानकारी से रूस की इस हमले में भूमिका साबित होती है। जी हाँ, लेकिन वो कितनी सच है वो किसी को भी

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
5: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
5: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
6: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
7: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331711 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
6: अरे वाह, इनका पता बताना।
7: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331711। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, खबरों की बात यहां पर हो रही है और अमेरिकी हमलों के जवाब में कार्रवाई करते हुए ईरान बोला अमेरिका को पछताना पड़ेगा। जी हाँ, तो जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि अमेरिका और ईरान का जो विवाद था वो थोड़ा सा शांत होता हुआ लग रहा था, लेकिन फिर से वो बढ़ गया है। जी हाँ, यहां पर अमेरिकी सेना ने मंगलवार को ईरान पर फिर से हमले शुरू किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसकी जानकारी दी है। सेटकॉम ने कहा कि अमेरिका के ये हमले ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हाल ही में किए गए हमलों के प्रयासों के बाद किए गए। ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक अमेरिकी हमलों में 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट ने बताया कि दक्षिण ईरान के सिरक में अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद उसके छर्रे वहां चल रहे एक शादी समारोह के दौरान एक घर में जा गिरे। इसी घटना में ये लोग मारे गए और घायल हुए। इसके जवाब में ईरान ने इराक और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। स्थानीय सरकारी मीडिया और जॉर्डन की सशस्त्र सेना ने इसकी जानकारी दी है। वहीं कुवैत और बहरीन में भी हमलों की खबरें सामने आई हैं। IRGC ने कहा कि अमेरिका को इन हमलों पर पछताना पड़ेगा। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक बुधवार तड़के ईरान ने सिरक हमले के जवाब में जॉर्डन के अकाबा में अमेरिकी मरीन बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की। जॉर्डन की सशस्त्र सेना ने कहा कि उसने 13 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका, इनमें से 10 को नष्ट कर दिया गया, जबकि 3 मिसाइलें दूर दराज के इलाकों में गिरी। ईरान के इस हमले में किसी की भी मौत की और या घायल होने की खबर नहीं है। इस बीच कुवैत की सेना ने कहा कि बुधवार तड़के ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में उसके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे।

जी दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और वहां पर फिर से जो है वो एक्टिव हो गए हैं मिस्टर ट्रंप। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मुझे ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करना, या दैट इज द स्टेटमेंट दैट ही हैज गिवन। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान को किसी बातचीत के लिए टेबल पर लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मंगलवार रात ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एबीसी न्यूज की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उनका प्रशासन ईरान को बातचीत के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें ईरान के साथ समझौता करने की कोई परवाह ही नहीं है। ट्रंप ने लिखा कि एबीसी ने जो रिपोर्ट दी है वो

न्यूज है, मैं ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे अभी की स्थिति ज्यादा पसंद है जहां हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा लगभग पूरा नियंत्रण है और ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह रही है। वे बस ऐसी प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं जिसे टाला नहीं जा सकता। ट्रंप ने अंत में लिखा कि आखिर ईरान के लोग कब आवाज उठाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। जी हाँ, अब ये सारी चीज तो हो गई है, लेकिन हम सबको पता है कि कैसे ट्रंप डेफिनेटली ईरान को धमकियों से, प्यार से, सुगबुगाहट से, मिस्टीरियस तरीके से टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ईरान ने सीधा सीधा कह दिया है, देखो तुम लोग क्लियर तो हो ही नहीं, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी शर्तों के साथ टेबल पर आए और तुम्हारी सारी शर्तें मान जाए, ऐसा तो नहीं होगा भाई। जी हाँ, सो ईरान अब आ तो नहीं रहा है टेबल पे, तो उनको अमेरिका को समझ आ गया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, तो उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए और फिर मुकर गए कि हमने तो कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की जहां पर हम उन्हें टेबल पर लाने की, कॉन्वर्सेशन के लिए टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ ईरान इज नॉट द ओनली कंट्री जिसके पीछे अभी ट्रंप पड़े हैं, बल्कि कनाडा जो है इज अ क्लोज सेकंड। जी हाँ, जैसे मैंने कहा था कि ट्रेड वॉर जो है वो बहुत ही खतरनाक चल रही है, इधर से कुछ हो रहा है, उधर से कुछ हो रहा है। जी हाँ, इनफैक्ट कनाडा ने उनके लिए टॉयलेट पेपर सप्लाई जो है वो कम कर दिए। एंड डू यू नो कि अमेरिका इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री है और वो पहली कंट्री है जो सबसे ज्यादा टॉयलेट पेपर की खपत करती है, मतलब सबसे ज्यादा खपत अमेरिका में लगती है, सबसे ज्यादा टॉयलेट पेपर यूज अमेरिका में होता है। आप लोग बोलोगे कि वाह निविया वाह, ये तो बहुत ही खतरनाक सी खबर है। वेल यू नो इट्स अ फैक्ट, एंड कनाडा ने वही सप्लाई जो है वो कम कर दी है, जिसकी वजह से टॉयलेट पेपर के प्राइजेस जो है वो बढ़ गए हैं। अब वहां पर ऑन्टेरियो के गवर्नर जो है उन्होंने कहा था कि हमको कोई जरूरत नहीं है अमेरिका के साथ कुछ भी करने की, फालतू में ये बंदा अपनी तानाशाही दिखाता है, अरे भागो तुम यहां से, हम तुमको बिजली ही नहीं देंगे, हम तुमको बिजली नहीं देंगे तो तुम लोग कैंडल लाइट डिनर करोगे। तो ये सुनकर डोनाल्ड ट्रंप को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने बोल दिया कि ओके तो ऐसा करते हैं, लेक ऑन्टेरियो अब से लेक ऑन्टेरियो नहीं लेक अमेरिका है। इनफैक्ट इस काम को करने के लिए वो इतनी हद तक चले गए कि उन्होंने गूगल से और एप्पल से भी कह दिया कि अपने मैप्स पर सीधी सीधी बात है, तुम लेक ऑन्टेरियो को लेक अमेरिका कर दो। एंड ये हो भी गया। जी हाँ, इनफैक्ट एप्पल ने तो कह दिया कि ट्रंप खुद हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर तुम नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। अब ये दोनों ही, यानी कि गूगल और एप्पल दोनों ही अमेरिकी कंपनीज हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप से पंगा तो नहीं ले सकते, तो उन्होंने भी कर दिया। अब लेक ऑन्टेरियो जो कि अपेरेंटली कनाडा की लेक है, अब उसे लेक अमेरिका कह दिया गया है और दोनों मैप्स पे भी ये अब लेक अमेरिका नजर आ रही है। कनाडा वाले सोच रहे होंगे कि क्या पेटी इंसान है, मतलब क्या आपको तो बुढ़ापा सर पे चढ़ गया है, क्या चल क्या रहा है। बट मैंने ना बहुत सारे ओल्डी गोल्डी लोग देखे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, और ये बट दिस ट्रंप पर्सन, आई डोंट नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन, मतलब इतना पेटी है कि ऑन्टेरियो के एक पॉलिटिकल लीडर ने ये कह दिया कि हम लोगों को, हम इनको पानी नहीं देंगे, तो उन्होंने गुस्से में आके लिटरली लेक ऑन्टेरियो का नाम ही चेंज कर दिया। जी बट कभी की बात यह है कि टॉयलेट पेपर अमेरिका को बहुत कम मिल रहा है, जिससे कि उधर टॉयलेट पेपर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब अमेरिका तो हर किसी के पीछे पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है, उधर भी पड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन मिस्टर ट्रंप इज अ वेरी पेटी पर्सन, एंड दैट्स अ फैक्ट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जानू सो इसी के साथ कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मेरे सामने एक चीज आती है जो कि मुझे काफी ज्यादा रियल लगती है। मुझे लगता है कि सेंस बना रही है, और कोई चीज सेंस बना रही होती है या फनी होती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। तो वहां पर लिखा हुआ था कि इट्स हार्ड टू बिलीव देयर वॉज अ टाइम आई वोक अप शार्ड हैड ब्रेकफास्ट वॉच्ड कार्टून्स एंड स्टिल मेड इट टू स्कूल बिफोर 8 AM। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। इट्स हार्ड टू बिलीव देयर वॉज अ टाइम आई वोक अप शावर्ड एंड ब्रेकफास्ट हैड ब्रेकफास्ट वॉच्ड कार्टून्स एंड स्टिल मेड इट टू स्कूल बिफोर 8 AM। दीज डेज इट टेक्स मी 30 मिनट्स टू अंडरस्टैंड हु आई एम आफ्टर वेकिंग अप एंड आई एम लाइक सही में मतलब सुबह उठ के मुझे ज़ोंबी जैसी फीलिंग आती है, लेकिन सिर्फ मुझे ही आती है कि आप लोगों को भी आती है। आप लोग बोलोगे कि निविया ज़ोंबी थोड़ा फार फेस्ट नहीं हो गया? वेल ऑफ कोर्स, बट सच में ना मतलब ऐसे फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि ओके मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्या कर रही हूँ। सो क्या ये आपके साथ भी होता है? क्योंकि अगर ये मीम है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मतलब क्या वक्त होता था ना, मतलब इतनी सारी चीजें हम कर लेते थे, ब्रेकफास्ट कर लेते थे, नहा लेते थे, धो लेते थे, कार्टून भी देख लेते थे, सारे मजे कर लेते थे, खेल लेते थे, और उससे पहले 8 बजे स्कूल भी पहुंच जाते थे। लेकिन आजकल स्कूल तो जाना नहीं पड़ता, लेकिन उठते ही हमको ऐसी फीलिंग आती है कि अच्छा हम हैं कहाँ, वेयर एम आई। जी हाँ, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है जरूर बताइएगा मुझे। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
9: दोस्तों इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, या टन टाटा ओल्ड इज गोल्ड शुरू हो रहा है। और ये सेगमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए पुराने गाने प्ले करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ। जी हाँ। सो अगर आपका कोई गाना है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो पुराना है, तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम उसको फरमाइश करने का। और अगर किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं, वही पुराना गाना उनको खूबसूरत फील करवाना चाहते हैं, उन्हें पटाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। सो आपके पास नंबर है और हम आपके लिए वो गाना प्ले करने के लिए भी तैयार हैं। सो जल्दी से आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ और डेडिकेटेड सॉन्ग्स के साथ। जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ अभी आप सबके लिए नंबर वन सॉन्ग इस सेगमेंट का, वो बहुत ही ज्यादा खास है। और वो आज के दिन में और भी ज्यादा खास क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। लेकिन पहले आप ये गाना सुनिए, क्योंकि आज किसी का जन्मदिन है जो कि इसी गाने में आपको नजर आए हैं। जी हाँ,

मतलब अगर बात करें उस अभिनेत्री की जिसका जन्मदिन है आज, जिनका जन्मदिन है और वो सबसे ज्यादा चर्चित अभिनेत्रियों में से रही है 60 के दशक की, तो आपके दिमाग में नाम तो आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने आपको गाना सुनाया था, मैंने आपको हिंट दे दिया था सबसे बड़ा, और जो गाना अभी आपने सुना उस गाने में आपको नजर आती है साधना, एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, साड़ी में, गजरे में, बिंदी में, और चांद को निहारती हुई खूबसूरत सी अपनी स्माइल के साथ उन लिरिक्स को गाती हुई। जी हाँ, साधना का जन्मदिन है आज, और साधना हमारे लिए क्या है, उनके फैंस के लिए क्या है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर बात हो सबसे ज्यादा खूबसूरत गाने किसकी झोली में है, तो साधना का नाम सबसे ऊपर आएगा, और उसका रीजन क्या है वो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि वही गाने मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। सबसे ज्यादा कल्ट फेवरेट गाने किसके हुए हैं, वो है साधना के। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है। नाउ साधना ने अपने करियर की शुरुआत 1 रुपए से की थी, मतलब 1 रुपए से उन्होंने फिल्मों में आने का सोचा था, मतलब एंट्री मारी थी, और जब वो आई थी तो उन्हें 1 रुपया मिला था। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, लेकिन 60 के दशक तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया था जो कि बहुत कम अभिनेत्रियों के पास था। जी हाँ, उनके हेयर स्टाइल की बात करें तो लड़कियां उन्हें आज भी फॉलो करती हैं, उनके कपड़ों की बात करें तो भी लड़कियां उन्हें आज भी फॉलो करती हैं, और ये है साधना शिवदसानी आप सबके लिए। अब साधना की बात हुई है और उनका जन्मदिन है, तो ऑफकोर्स उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा कल्ट फेवरेट सा सॉन्ग आप सब

0: जी दोस्तों, श्री 420 से शुरुआत की उन्होंने अपने करियर की। जी हाँ, साधना की बात हो रही है। और 1940s में वो पैदा हुई थी कराची में, तब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। अपनी फैमिली के साथ वो मुंबई आकर बस गई जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बचपन से ही काम करना चाहती थी पिक्चरों में और शुरुआत की श्री 420 से, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा किरदार निभाया और उसके लिए उन्हें 1 रुपया मिला। अब इसके बाद वो अभी काम कर ही रही थी, लेकिन उन्हें अपना मेन कैरेक्टर, जो मेन लीड रोल मिला, वो था 1960s में। जी हाँ, आके नैयर ने उन्हें अपना पहला जो है वो फीमेल लीड रोल दिया और उसका नाम था मूवी का लव इन शिमला। जी हाँ, लव इन शिमला में उस किरदार के लिए बहुत सारे चेंजेस किए गए। जी हाँ, उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए। सबसे बड़ा चेंज था उनके हेयर स्टाइल का। जी हाँ, अब आपने साधना कट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन वो साधना कट कैसे कैसे हुआ और कैसे उसकी शुरुआत हुई, उसी के बारे में हम आपको बताते हैं। सो साधना का माथा बहुत ज्यादा चौड़ा था और लव इन शिमला में उनका वो चौड़ा माथा प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को बॉदर कर रहा था। अब ऐसे में वो चाह रहे थे कि एक खूबसूरत सी अभिनेत्री का माथा जो है वो किसी तरह छुपाया जाए, लेकिन फिर भी उसको और भी ज्यादा खूबसूरत जो है वो दिखाने में वो कामयाब हो जाए। उन पर बहुत सारी विग्स ट्राई की गई, उन पर बहुत सारे लुक्स ट्राई किए गए, हेयर स्टाइल्स ट्राई किए गए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। फिर फाइनली जो डायरेक्टर थे मूवी के नैयर, उन्होंने ऑड्री हैपबर्न के जो सिग्नेचर स्टाइल है उससे प्रेरित होकर साधना पर फ्रिंजेस ट्राई करने की कोशिश की और उसी से वो लुक जो है वो वहां पर बना। अब ये लुक जब सामने आया तो साधना इसके बारे में पहले बहुत ज्यादा जो है वो नर्वस थी, बिकॉज उनके लगता था कि ये लुक जो है वो इंडियन लड़कियों पर इतना अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन जब वो लुक बनाया गया और जब उन्हें शूटिंग शुरू की गई उनके साथ, तो वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी कि लिटरली वो कट साधना कट के नाम से फेमस हो गया। लड़कियां सैलून्स में जाती थी, ब्यूटी पार्लर्स में जाती थी और कहती थी हमें साधना कट करवाना है। और ऐसे ही लव इन शिमला से वो रातों रात स्टार बन गई और साथ में फैशनिस्टा एंड फैशन आइकॉन भी। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: अभी न जाओ छोड़ कर

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज

क्विट चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्विंसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ साधना की बात हो रही है क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। जी हाँ, साधना शिवदसानी बहुत ही गजब की एक्ट्रेस रही है। 1960s में उन्होंने रूल किया है बॉलीवुड को, हिंदी फिल्म जगत को, और आज उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि कैसे साधना सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी बल्कि वो एक सेंसेशन थी इन अ फैशन वर्ल्ड। जैसे उनका हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से फेमस हो गया, वहीं उनका वक्त पिक्चर में लुक जो कि एक फिट कुर्ते के साथ चूड़ीदार था, वो भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया। मतलब वो कुछ भी पहनती थी वो सेंसेशन बन जाता था, वही फैशन बन जाता था, लड़कियां इंस्पायर हो जाती थी। लेकिन अगर उनकी फिल्मोग्राफी की बात की जाए तो परख, हम दोनों, असली नकली, एक मुसाफिर एक हसीना जैसी फिल्मों में भी काम किया है उन्होंने, और इसके बाद मेरे महबूब, राजकुमार, वो कौन थी, आरजू, वक्त, मेरा साया जैसी फिल्मों में उन्हें बड़ी स्टार बना दिया। मतलब इन पिक्चरों ने उन्हें वो सफलता दिलाई जो कि लिटरली अनपैरल्ड थी। जी हाँ, और इसी के साथ साधना और जो उनके फेमस डायरेक्टर थे राज खोसला, जिन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स साथ में दी, वो भी काफी चर्चित थी क्योंकि उनके पिक्चर्स में शामिल थी वो कौन थी, मेरा साया, अनीता जैसी मिस्टीरियस फिल्में, और इससे साधना को मिस्टीरियस गर्ल का नाम भी दिया गया। जी हाँ, इसमें उनका वो सफेद साड़ी वाला रुख और रहस्यमय अंदाज जो है वो ऑडियंस को इतना ज्यादा पसंद आया कि लोग उसके भी कायल हो गए। जी हाँ, ऑफ कोर्स उसके बाद उन्हें अपने हेल्थ इश्यूज ने भी काफी परेशान किया, उन्हें हाइपरथायरॉइडिज्म जो है वो हो गया था 1960s के बाद, और फिर उन्हें इलाज के लिए बोस्टन जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो वापस आई। 1969 में वापसी करके उन्होंने फिर से दो बड़ी बड़ी जो है वो मूवीज दी, उनमें से थी एक फूल दो माली और इंतकाम। लेकिन उन्होंने शादी की उसी डायरेक्टर से जिसने उन्हें वो पहचान दी थी, मतलब लव इन शिमला के डायरेक्टर नायर। जी हाँ, उनके साथ शादी करके उन्होंने पिक्चरों से दूरी बना ली। हाँ, उन्होंने निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाया लेकिन उसमें उन्हें इतनी सफलता नहीं मिली, तो धीरे धीरे वो फिल्मों से दूर चली गई। जी हाँ, इसी के साथ ये थी तो साधना की कहानी, और इसी के साथ उनका जन्मदिन है तो उन्हीं के गाने से एंड भी करेंगे आज के प्रोग्राम को, और ये है आज आई बहार, क्योंकि शी वॉज जस्ट लाइक अ बहार फॉर हर फैंस, मतलब वो बहार से कम नहीं थी अपने फैंस के लिए। सो अगेन, ये लास्ट सॉन्ग उन्हीं के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए इस प्रोग्राम में। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आजा आई बहार आप सबके लिए। मिलते हैं कल।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन। ए विलेन।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

नमस्कार, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की पहली माइक्रो कंट्रोलर फैसिलिटी लॉन्च। जी हां, ब्रिस्बेन के पुलन वैले

ब्रिस्बेन के सबसे बड़े त्योहार रिवर फायर से ठीक पहले 5 सितंबर को फेरियों की 24 घंटे की हड़ताल की चेतावनी दी गई है। यूनियन और रिवर सिटी फेरीज फेरियों के बीच वेतन समझौते को लेकर बात नहीं बन पाई है। वहीं ब्रिस्बेन लोकल पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों में पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। वहीं ब्रिस्बेन में घर बनाने वालों के लिए खुशखबरी, क्वींसलैंड सरकार ने ब्रिस्बेन में आम लोगों के लिए किफायती आवास यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग की नई योजना का ऐलान किया है। इससे कामगार लोगों को तेजी से नए घर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं नदियों की सफाई का अभियान सफल, ब्रिस्बेन के वाटरवेज और तटीय इलाकों से करीब 1,12,000 किलो कचरा और प्लास्टिक साफ किया गया है। इस अभियान में स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसी के साथ ब्रिस्बेन के इंजीनियरिंग सेक्टर में बूम, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की नई रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिस्बेन में कई तकनीकों और प्रोजेक्ट्स के चलते इंजीनियरिंग सेक्टर में नौकरियों की भारी मांग देखी जा रही है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला। सबसे पहली खबर अयोध्या से है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक कर रहा है जिसमें मंदिर के पहले फुल टाइम सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। वहीं दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज, देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज दिन भर हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ तमिलनाडु सरकार की किसानों को राहत, दक्षिण भारत से खबर है कि तमिलनाडु सरकार ने परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों और स्थानीय लोगों के खिलाफ दर्ज सभी पुराने मामले वापस लेने का बड़ा फैसला किया है। वहीं पूर्वी दिल्ली में दर्दनाक हादसा, दिल्ली के पांडव नगर से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां संजय लेक में डूबने से 22 से 25 साल के 3 युवाओं की जान चली गई है। वहीं देशभर में नदियों का बढ़ा जलस्तर, देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के निचले इलाकों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं डिजिटल इंडिया पर पहल को मिला बढ़ावा, केंद्र सरकार ने आज छोटे कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। वहीं नासा की नई वैज्ञानिक खोज, अंतरिक्ष में विज्ञान से एक बहुत दिलचस्प खबर आई है। नासा की एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी ने सूरज की हिफाजती परत यानी कि हेलोस्फेयर को खो दिया था। वहीं मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ा, मिडल ईस्ट से बड़ी खबर आ रही है जहां अमेरिका के नए हवाई हमलों के बाद ईरान में 11 लोगों की जान चली गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों से कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ है। वहीं वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों का मानना है कि ग्लोबल सप्लाई में सुधार आने की वजह से तेल के दामों में ये राहत देखने को मिल रही है। वहीं यूरोप में पर्यावरण सुरक्षा के नए नियम, यूरोपीय संघ ने प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए आज से एक नया सख्त कानून लागू कर दिया है। इसके तहत सभी कंपनियों को पैकेजिंग में रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। वहीं ग्लोबल समिट की तैयारी, दुनिया भर के शीर्ष नेता इस हफ्ते होने वाले एक अहम पर्यावरण समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसमें कार्बन उत्सर्जन घटाने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नए समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नई गाइडलाइंस, वैश्विक टेक कंपनियों ने एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए आज एक नए सुरक्षा समझौते पर दस्तखत भी किए हैं। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले भारतीय गेंदबाज ईशांत शर्मा का जन्मदिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास दिन है। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा का आज 38वां जन्मदिन मनाया जा रहा है।
वहीं एशियन गेम्स 2026 की तैयारियां तेज। जापान में होने वाले एशियन गेम्स

0: 2026 को लेकर बड़ी अपडेट आई है। आयोजकों ने बताया कि क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मैदान और तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वहीं यूएस ओपन में बड़ा उलटफेर, टेनिस कोर्ट से खबर है कि जारी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एक गैर वरीयता प्राप्त युवा खिलाड़ी ने दुनिया के टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल दिग्गज को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। वहीं फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट में हलचल, यूरोपीय फुटबॉल क्लबों में खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त का दौर चरम पर है। दुनिया के एक मशहूर फॉरवर्ड खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बोली के साथ एक क्लब के साथ अनुबंधन साइन कर लिया है। वहीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के नए नियम, विश्व एथलेटिक्स संघ ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के लिए एक नए नियम जारी किया है। इनका मकसद फाउल स्टार्ट को कम करना और खिलाड़ियों के लिए पारदर्शी सिस्टम तैयार करना है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेंबर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant
4: since 2003. मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
5: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
4: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
5: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 41009। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
6: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
7: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
6: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
7: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
6: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
7: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
8: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
9: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर।
10: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
11: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: Sargun Music Academy presents a musical tribute to celebrate the timeless classics of Mahmood Rafi and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 PM onwards. For tickets, contact 04227.

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाच के मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04-111-27-035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04-111-27-035। रिमेम्बर द नंबर इज 04-111-27-035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल

0: कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल

0: कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल गई।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

हां जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 107.1 FM ते जी आर जी संदेश अलग दिन नाल तुसी बने होए। अगला नाम इस लिस्ट विच जेड़ा हैगा है वह हैगा जी होमबॉर्न दा। नीरज गायवान वालों निर्देशित फिल्म ईशान खट्ट विशाल जेठवा जानवी कपूर दी है की है। तीनों इस लीड फिल्म दे विच लीड रोल दे विच ते मार्टिन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इस दे। ए ना बचपन दे दो दोस्तां जिन्हां दे विचों एक मुस्लिम हैगा ते एक दलित समुदाय दे नाल हैगा है तां उन्हां दी दोस्ती साहत ते जाति राजनीति दी कहानी हैगी है। ए भारत दी अधिकारित एंट्री सीगी 88वें ऑस्कर दे लई बेस्ट इंटरनेशनल फीचर दे विच। शॉर्टलिस्ट हुई पर नॉमीनेशन नहीं मिलिया। ए धर्मा प्रोडक्शन वालों बनाई गई हैगी है ते 26 सितंबर नू रिलीज हुई सी।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश चालक दिन से बने हुए। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। ओ फिल्म का नाम है मसान। नीरज गायवान दी डेब्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्ढा बने से ते दीपक जो विकी कौशल बने से दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उत्थे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्ढा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

हाँ जी तक पर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन आल से बने हुए हो। इस तो बाद अगला जिड़ा नाम है इस लिस्ट विच वो है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नु करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्गिया हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दस दिंदी आ, वह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उत्ते उसके प्रतिरोध की कहानी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी राधिका आपटे ते सुरविंद चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच हैगे ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन्हां महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

0: in the house.
1: जी देखो वेला तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर जाने तो पहला थोड़ू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी से मैं सोचा भी दस दिनी है। तो उस फिल्म का नाम है जी डिसिपलिन जी है। चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित हैगी। फिल्म न वेनिस फिल्म फैसटिवल एफ आई PRESCI अवार्ड मिले हैगा। अल्फोंसो कोरान हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से गिरे। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा दी कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर है करो तुम साढ़े रेडियो बरसवानी 101.1 FM साथ फेसबुक पेज है जी बरसवानी @bersawani.com साथ ईमेल आई डी है जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना लो, पर सा गलबात जरूर करो है ना। तो बाकी मैं तो यही कहना कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखे करो। सत श्रीकाल।
2: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night?
3: Yo, I'm gonna smash you, boy.
4: Kid.
3: Tomorrow night, I'm gonna smash you.

कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
1: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: प्यार में।
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.

0: in. WhatsApp या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो ओम्स ओर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, ओम्स ओर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओम्स ओर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी.
3: आप लोग सुन रहे हैं गीत युग के प्यार भरे नगमे.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं, दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना आ...

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीम सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे

ये जीवन इतना अनमोल है कि हम जो चाहें अपनी सांसों के इस दुनिया में रहते हुए हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इन सांसों को, इस जीवन को, इसके महत्व को कभी समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। आइए आज एक बार फिर से कुछ सद्विचारों के साथ अपने ही जीवन को समझने की एक और कोशिश करते हैं हमारे रेडियो प्रस्वानी के सुबह के खास सफर जीवन आधार में। श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी, जीवन आधार के सफर में आज एक बार फिर से आपके साथ। तो चलिए इस अगले गीत के साथ अपने इस कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु, गुरु की महिमा अपरंपार है और आपको इस संसार के भंवर से अगर बाहर निकलना है, इस संसार के भंवर को पार करना है तो गुरु का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। फिर चाहे आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, इस दुनिया का कोई भी धर्म बिना गुरु के जीना नहीं सिखा पाया है। गुरु की जरूरत हर धर्म में पड़ी है अपने कर्मों को पूरा करने के लिए और सही ढंग से पूरा करने के लिए। इस संसार से पार पाने के लिए एक सही रास्ते को ढूंढने की जरूरत है। जीवन में अपने दिमाग को सही दिशा देने के लिए गुरु की आवश्यकता है, जो बचपन से लेके आखिरी सांस तक आपका साथ निभाता है। इसलिए गुरु पे भरोसा रखिए और गुरु से शिक्षा लेना मत भूलिए। गुरु है तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत पार कर जाएंगे और इसीलिए तो शायद भगवान ने भी गुरु को खुद से ऊपर बताया है। तो आइए हम सबके गुरुओं को नमन करते हैं और सुनते हैं ये गुरुवाणी। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रह्मवाणी पर जीवन आधार।

जीवन के आधार को इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। ये सफर कुछ ऐसे विचारों से भरा है जो इस सुबह हमारी जिंदगी को और भी खुशनुमा बना रहे हैं, और भी हमें जीने के तरीके सिखा रहे हैं और हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। एक ऐसे ही विचार को आगे सुनने से पहले एक गीत के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर दास जी का एक एक दोहा जीवन का सही महत्व सिखा देता है। कितनी सही बात है ना, जब जैसे चक्की चलती है और दो पटरों के बीच में जो भी कुछ पिसता है वो साबुत नहीं बचता है। ठीक इसी तरह से जब दो लोगों के बीच में आप पड़ते हैं, फिर चाहे वो आपके अपने हों गैर हों, तो कहीं ना कहीं आप भी उसी चक्की में पिस जाते हैं। आप पर भी उंगली उठती है, आपको भी दोषी ठहराया जाता है, आप बच नहीं सकते। आप जाएंगे तो दो लोगों के बीच सुलह कराने, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उसी बात में फंस कर रह जाते हैं। आप भी उसी चक्की के एक पाटे के बीच में अनाज का एक ऐसा दाना बन जाते हैं जो उसमें पिस जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि पत्नी और माँ के बीच में अक्सर पति फंस जाता है, लेकिन ये सिर्फ कहावत है, असल में जिंदगी में यही होता है। जब भी आप दो लोगों के बीच सुलह कराने की कोशिश करेंगे तो उन दोनों के बीच आपका अस्तित्व भी आ ही जाता है, और यही जीवन का सत्य है, यही रिश्तों का सत्य है। इसी बात पर एक और गीत के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

साक्षी को सुन रहे हैं आप जीवन आधार में रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। कुछ ऐसे विचारों पर हमारा आपका साथ जो इस सुबह के साथ हमारे आज के दिन को भी खूबसूरत बनाते हुए हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की ओर एक अगला कदम है। अभी एक गीत के साथ आगे बढ़ूंगी और उसके बाद जीवन आधार में और भी कई खूबसूरत बातें आपके साथ बांटूंगी। सुनते रहिए मुझे और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

कितने भी अच्छे कर्म करने की सोच लें, आप कितना भी गंगा नहा लें, आप कितने भी तीर्थ कराएं, आप मक्का काशी काबा कहीं भी घूमाएं, अगर मन साफ नहीं है तो आपको शांति भी कहीं नहीं मिलेगी और ऊपर वाला भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर ग्रंथ में एक ही तो बात कही गई है कि मन के मैल को साफ कीजिए, अपने अंदर झांकिए, आपको ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ग्रंथ पढ़ने से या फिर ईश्वर ईश्वर ढूंढने से, जगह जगह घाट घाट पे जाके ईश्वर को ढूंढने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब तक मन साफ नहीं होगा, जब तक आप दूसरों का दुख देखकर दुखी नहीं होंगे और दूसरों की खुशी में खुश नहीं होंगे, तब तक आपके मन का मैल धुला नहीं है और तब तक ईश्वर को तो छोड़ दीजिए, आपको शांति की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपने मन को साफ करिए। रोज नहाकर तन तो धो लेते हैं, मन का मैल भी धोइए। और मन का मैल गंगा नहाने से नहीं धुलेगा, मन का मैल धुलेगा मन को साफ करने से, दूसरों के लिए खासकर अच्छे विचारों को अपने दिल में अपने मन में जगह देने से, अच्छे कर्म करने से। आइए उन्हीं कर्मों के नाम ये अगला गीत सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

भी अजीब है ना दोस्तों, दुख से बचने के लिए लोग अक्सर सुख से बचते हैं। दुख जब जिंदगी में आता है तो दुखी हैं कहते हैं, और उन पलों में अक्सर हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे जो सुख हैं, छोटी छोटी जो खुशियां हैं, उन्हें जीना भूल जाते हैं। मृत्यु आ जाएगी, हम इस दुनिया से चले जाएंगे कहते कहते हम अपनी जिंदगी को नहीं जी पाते हैं। यानी जो हमारे पास आज है हम उस पर ना ध्यान दे के हम कल कैसा होगा उस पर ध्यान देते हैं। हमारी जिंदगी में दुख आएगा, हमारी जिंदगी में कोई बड़ी खुशी आएगी, इस लिहाज से हमारी जिंदगी ही हमसे कब दूर हो जाती है इस बात का हमें पता भी नहीं चलता है। सोचा है कभी? नहीं सोचा तो सोचिए, और आइए आगे बढ़ते हैं इसी सोच के साथ, इस अगले गीत के साथ भी। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 107.01 पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन को जानने का समझने का सुबह का हमारा खास सफर जीवन आधार। आज इस सफर को अब यहीं पर वाइंड अप करेंगे और इस वादे के साथ कि कल फिर से जीवन आधार में कुछ अनमोल विचारों के साथ आपसे फिर से हमारी जरूर होगी मुलाकात। ऊपर वाला आपको खुश रखे, रहम दिल रखे और जीवन के पथ पर आगे बढ़ाता रहे, आपकी खुशियां बरकरार रहें, इसी मनोकामना के साथ आज लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

குட் மார்னிங் பிரிஸ்பன், நமஸ்தே, அதாப், சத் ஸ்ரீ அகால், வெரி வெரி குட் மார்னிங், சுப்ரபாத், கியா ஹால் சால் ஹை மேரி பியாரி பியாரி பிரிஸ்பனி ஃபேமிலி. அகர் ஆப்கி ஆன்கே குல் சுகி ஹே நா, காஃபி பன் சுகி ஹே ஆர் காடி பிரிஸ்பன் கி ரோட் பர் நிக்கல் சுகி ஹே, யானி கி ஹமே நிக்கலா பிரிஸ்பன் கி ரோட் மே. ஹான் ஜி, தோ தோஸ்தோ, யே பியாரி பியாரி சி எனர்ஜி கே சாத் மே ஆப் சபி கே பீச், யானி ஆப்கி தோஸ்த் ஓர் ஹோஸ்ட் ஆர் ஜி சானி ஜென், ஹாஜர் ஹோ சுகி ஹே லேகே प्रोग्राम जाने का सफर ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन, और खास प्यारे प्यारे गाने आप सभी के लिए दोस्तों. और आज की मॉर्निंग बेहतरीन जरूर होगी, क्योंकि हमेशा हमारा आपको पैटर्न पता ही है कि हम क्या कुछ सुनाते हैं. गॉसिपिंग होगी, एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम क्या अपडेट्स हो रही है वो लेकर आए हैं, और बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिस्बेन की न्यूज अपडेट्स आपके बीच साझा करेंगे. तो आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारी प्यारी प्यारी सी मॉर्निंग ऑफिशियली ऑन चुकी हो चुकी है. तो आपने दोस्तों कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रिस्बेन में शुरू हो चुका है जी अपनी बातों का सिलसिला. कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन.

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में इस प्यारी से एनर्जी के साथ पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, हम सुबह सुबह उठते ही अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक बिल्स, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्यूचर, कितनी चीजें, कितनी टेंशन हमारे दिमाग में होती है। लेकिन दोस्तों आज एक काम जरूर करिएगा, सुबह के पहले 10 मिनट्स ना सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखिए। जी हाँ, एक डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी फेवरेट चाय या फिर कॉफी एंजॉय कीजिए और खुद से कहें, आई डोंट नीड टू हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट टुडे, आई जस्ट नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, बस एक स्टेप एट अ टाइम, है ना। सही बात है ना। इसीलिए दोस्तों अपने लिए 10 मिनट निकालना बहुत जरूरी है और उन 10 मिनट में ना आपको पता चलेगा अपने बारे में, क्योंकि अभी तक आपको भी अपने बारे में नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि हम इतनी सारी कहते हैं ना बिजी शेड्यूल में अपने आप को खो ही देते हैं, अपने आप को भूल ही जाते हैं। सिर्फ हमें यही पता होता है कि आज कौन सा प्रोग्राम, कौन सा टारगेट पूरा करना है, क्या कुछ करना है, कल के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। बहुत सारे काम होते हैं जिस बीच हम अपने आप को भूल जाते हैं। इसीलिए मॉर्निंग में जरूर 10 मिनट अपने लिए जरूर निकालिएगा, फिर देखिए और भी मजा आएगा आपको लाइफ को जीने का। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

పండుగలు

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बेन में। तो आइए फिर टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्विक ऑस्ट्रेलिया अपडेट जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर इकोनॉमिस्ट जो है उसकी नजर बनी हुई है। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रिस्बेन समेत कई ऑस्ट्रेलियन सिटीज में प्रॉपर्टी प्राइसेस पर प्रेशर देखने को मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो अगर आप ब्रिस्बेन में प्रॉपर्टी मार्केट को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं ना, तो दोस्तों ये डेफिनेटली वॉचवर्थी सिचुएशन है। जानेंगे थोड़ी ही देर बाद और भी बहुत सारी बातें ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्बानी में। दोस्तों, ब्रिस्बेन में ना ब्रिस्बेन फेस्टिवल का मूड भी फुल स्विंग में है। दोस्तों, फेस्टिवल के शोज में मामाडर्स डब आए भी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं। एक एनर्जेटिक मदर डॉटर स्टोरी जिसमें की कॉमेडी, इमोशंस और रोलर स्केटिंग का इंटरेस्टिंग मिक्स है। और म्यूजिक लवर्स के लिए भी ब्रिस्बेन में एक्शन है। एक्स म्यूजिक के 3 नाइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन रॉक, हार्ड रॉक एंड मेटल सितंबर 1 से लेके 3 यानी कि आज तक, स्टेप 1 सितंबर से शुरू हो चुका था, आज तक फोर्टिट्यूड वैली के सॉप बॉक्स बियर में हो रहे हैं। तो आप अगर आज जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जानेंगे और भी बहुत सारी बातें ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिसवानी में। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा मूड बनाते हैं एंटरटेनमेंट का, क्योंकि बॉलीवुड और ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से आ रही है कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। और ब्रूनो मार्स फैंस के लिए बिग न्यूज है भाई। ब्रूनो मार्स के ऑस्ट्रेलिया टूर को लेकर डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि ब्रिस्बेन के सनकॉर्प स्टेडियम में एक एक्स्ट्रा शो ऐड कर दिया गया है। जी हाँ, अब ब्रिस्बेन में ब्रूनो मार्स 28 फरवरी और 1 मार्च यानी कि 28 फरवरी से लेके 1 मार्च 2027 को परफॉर्म करेंगे। जनरल टिकट सेल 4 सितंबर से स्टार्ट होगी। सो ये बहुत बड़ी न्यूज थी भाई। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी मेरे बॉलीवुड लवर्स, आपको भी एक बात चलो बता ही देते हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा इन डेज अपनी अपकमिंग फिल्म वाइब को लेकर हेडलाइंस में है। उन्होंने अपने पास्ट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने कभी कभी 18 आवर्स वर्किंग डेज भी किए हैं। और वहीं पर अगर हम कृति सैनन की बात करें, उन्होंने भी अपनी एक्टिंग जर्नी का एक इंटरेस्टिंग सीक्रेट शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि एक रैंडम मॉडलिंग अपॉर्चुनिटी के बाद धीरे धीरे उनके माइंड में एक्ट्रेस बनने का ड्रीम डेवलप हो गया। और मूवी लवर्स के लिए भाई सितंबर का मंथ जो है वो काफी एक्साइटिंग जो है वो होने वाला है। दायरा, हैवान और द विवन जैसे टाइटल्स के साथ बॉलीवुड और ओटीटी दोनों पर काफी न्यू कंटेंट आ रहे हैं। तो भाई एंटरटेनमेंट की दुनिया में फिलहाल एक्साइटमेंट फुल ऑन है। काइली से लेके ब्रूनो मार्स तक और बॉलीवुड में प्रीति जिंटा और कृति तक स्टार्स कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर ही रहे हैं। और अब बात करते हैं कुछ गानों की, यानी कि सुनने की। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और इस गानों को एंजॉय करते रहें।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने जानी बहुत सारी अपडेट्स, एंटरटेनमेंट की दुनिया से बहुत सारी बातें, बॉलीवुड से बहुत सारी बातें। तो दोस्तों, इसी के बीच अब बारी आ चुकी है क्लोज करने की, यानी कि प्रोग्राम को क्लोज करने की, ताकि कल फिर हाजिर हूँ आप सभी के साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज, ब्यूटीफुल वाइब के साथ। सो दोस्तों, आप सभी बस जुड़े रहिए रेडियो ब्रिस्वानी में। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड एंड कीप द ब्रिस्वानी वाइब अलाइव। सो वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग एंड हैव एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल थर्सडे। दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में जन्म लेते ही नहीं मिलेगी नागरिकता, ट्रंप का नया प्लान। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जन्मजात नागरिकता के नियमों को और सख्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार अब देश में बच्चों के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले माता पिता से उनकी खुद की नागरिकता या इमिग्रेशन स्टेटस का प्रमाण मांगने की योजना बना रही है। अमेरिकी सरकार के इस कदम को राष्ट्रपति ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लागू करने की पहली विस्तृत रूपरेखा के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना और नागरिकता के ऐतिहासिक नियमों में बदलाव करना है। मरमारा सागर में टकराए तुर्की के दो जहाज, एक डूबा, 10 क्रू मेंबर्स लापता। इस्तांबुल के सिलीवरी जिले के पास मरमारा सागर में तुर्की के दो व्यावसायिक जहाजों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद एक बल्क करियर के डूबने की आशंका जताई जा रही है, जिसके 10 क्रू मेंबर्स लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए तुर्की कोस्ट गार्ड के 14 जहाजों और एक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। पीएम मोदी की तस्वीर सेंसर करना घमंड की हद। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की ग्रुप फोटो से पीएम मोदी को हटाने के पाक पीएमओ के कदम पर भारत में तीखी आलोचना हो रही है। नेताओं ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पाकिस्तान पीएमओ के एक्स हैंडल से पोस्ट की गई तस्वीर को दोनों तरफ से क्रॉप किया गया था, जिसमें पीएम मोदी, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान और कई अन्य नेता शामिल नहीं थे। असली तस्वीर में सदस्य देशों के प्रमुख एक साथ खड़े थे। हालांकि कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरी फोटो भी शेयर की। भारत में ब्रिक्स सम्मेलन का मंच, दिल्ली में जुटेंगे दुनिया भर के दिग्गज। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस इस महीने के आखिर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस साल अध्यक्ष होने के नाते भारत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के नेताओं के साथ साथ विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि भी शामिल होंगे। गुटेरेस की प्रवक्ता स्टीफन गुजारिक ने कहा कि हमें अभी आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करनी है कि महासचिव लगभग 10 दिनों में नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स बैठक में भाग लेंगे। दुनिया के नक्शे से हटा सकते हैं पाकिस्तान का नाम, एससीओ की तस्वीर से पीएम मोदी को हटाने पर पाक को मिली चेतावनी। एससीओ ग्रुप की तस्वीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने को लेकर पाकिस्तान पीएमओ की जमकर आलोचना हो रही है और भारत में तीखी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर पीएम चाहें तो पाकिस्तान का विश्व के नक्शे से नामोनिशान मिटा सकते हैं। किर्गिस्तान के बिश्केक में सीएमओ समिट के दौरान विश्व नेताओं की जो तस्वीर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक्स हैंडल से पोस्ट की गई, उसको दोनों तरफ से क्रॉप किया गया था। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सदाक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता.
1: नमस्कार, नमस्ते और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों. आप सभी का दिल से स्वागत है रेडियो बिजवानी 1701 नई पर. एक नई सुबह है दोस्तों, एक नया दिन है और जिंदगी ने हमें एक और खूबसूरत मौका दिया है हंसने का, मुस्कुराने का और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का. तो चलिए, उम्मीद है आप कॉफी रेडी रखे होंगे या चाय, जैसे हम यहाँ पर रेडी है, और अपने मूड फ्रेश कर लीजिए क्योंकि आ गए हैं हम. ठीक है, साथ रहेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ खबरें भी लेकर आए हैं दोस्तों हम. ठीक है, तो साथ देते रहे दोस्तों. अमिता
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग.
1: आई डिडंट नो यू,
2: इट्स ओके.
1: देखिए, मैं हूँ जतीश और मेरे साथ में है अमिता. ठीक है, अगर अभी आप नए ज्वाइन किए हैं, हम सुबह सुबह प्रोग्राम लेकर आते हैं फ्रॉम मंडे टू थर्सडे.
2: जी,
1: फ्राइडे को नीलम है, सैटरडे को परमा भाई. ठीक है, और वैसे तो 24/7 है. ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो सफर है शुरुआत करते हैं. क्यों नहीं पहले गीत सुन लेते हैं अमिता?
2: Sure.
1: Then we'll come back in.
2: Why not?
1: Yeah. Do the usual news and everything.
2: Yes.
1: Okay, ready, Biswani.

0: तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पैसिफिक मोटरवे 8 माइल प्लेन स्टेशनरी व्हीकल है, नो ब्लॉकेज साउथ बाउंड टूवर्ड्स स्प्रिंगवुड, और बस इतना ही है दोस्तों। चले वेदा की ओर, और वेदा में कह रहे हैं कि आज 14 and 31 रहेगा, नो रेन, लेकिन कल सनी है, और कल 18 रहेगा मिनिमम, 18 and 32 नो रेन। सैटरडे को सनी रहेगा, 16 and 31 नो रेन। संडे को भी मौसम साफ रहेगा, 19 and 35 रेडी फॉर दैट नो रेन। मंडे को मोस्टली सनी, 16 and 27 बारिश नहीं होगी दोस्तों। ट्यूसडे को पॉसिबल शावर्स, 16 and 25 वन मिलीमीटर, और वेंसडे को पॉसिबल शावर्स, 14 and 26 वन मिलीमीटर रेन। ठीक है, चलो न्यूज के बगल चलते हैं न्यूज के ओर, और जल्दी से न्यूज बता दूं दोस्तों आपको। कहा गया है कि इन्फ्लेशन हैज जंप्ड इन फिजी, अभी फिजी का न्यूज है। फिजी एनुअल इन्फ्लेशन रेट रोज टू 7.6% इन ऑगस्ट, एडिंग टू कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर। अ न्यू $200 लिटरिंग फाइन इज नाउ इन फोर्स। द फिक्स्ड पेनल्टी हैज इंक्रीज शार्पली फ्रॉम $40 टू $200 अंडर द न्यू लिटर ऑफेंस रेगुलेशन। Constitution Review, Prime Minister Sithivani Rambuka says the Constitution Review Commission report will be made public. Acha, it will be made public, or hold on, kahan par hu main? Maafi chahta hu dosto, ye thoda jump kar gaya hai. Always the case, eh? Anyway, so sensitive. Anyway, और इसी में टैक्स के ऊपर टैक्स आ रहे हैं। द न्यू 200 लिटरिंग फाइन इज नाउ इन फोर्स। ओके, द फिक्स्ड पेनल्टी हैज इंक्रीज्ड। ओके, वी रीड द कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू, प्राइम मिनिस्टर Sithivani Rambuka सेज द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन।
1: It maybe it's not meant to be. Don't you get it?
0: Oh my goodness. Oh no. Okay. Says the Constitution Review Commission report will be made public. He has also said Fiji will hold elections by 6th February 2027 under the existing law if the Constitution Review isn't completed in time. Good health news. Suva's Sanjeevani Heart Hospital is expanding. Okay, expanding beyond children's treatment and plans to begin cardiovascular. Wow. Procedure for adult patients this month.
1: Wow. That's good news.
0: That must be an India hospital, right? Australia news. Interest rates are again in a major concern. Australia's economy grew 0.4% in the June quarter.

0: देखिए दोस्तों, हम हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं ना, लेकिन चले थोड़ा और कुछ बातें कर ले, कुछ इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आप जैसे थोड़ा एज होने लगते हैं ना, तो हमारा जो मसल डेंसिटी गिरने लगता है, ठीक है। तो यस, एज वी गेट ओल्डर वी नेचुरली लूज मसल मास एंड स्ट्रेंथ, ऑफन कॉल्ड सार्कोपेनिया।
1: ओके,
0: ऑलराइट। द गुड न्यूज इज दैट people in their 60s and 70s, especially 70s and beyond, can still build muscles and become stronger. ठीक है? The most important things are, वैसे तो दोस्तों अगर आप gardening regular base में करते हैं, ये सब movement करते रहते हैं, then it's okay. But कहते हैं कि resistance exercise, this is number one.
1: Yep.
0: Aim for 2 to 3 sessions a week. Exercises can include like sit to stand, chair पर बैठकर फिर ऊपर उठ जाना, ठीक है, फ्रॉम अ चेयर, वॉल, पुशिंग योर सेल्फ ऑन द वॉल, वॉल पुशअप, रेजिस्टेंस बैंड्स, राइट, जो मिलते हैं एक्सपेंड करने के लिए ना, लाइक अ रबर बैंड, यू नो दो टफ वंस,
1: यस यस,
0: या लाइट वेट्स, इसे डम्बेल हो, ये सब, स्टेप अप्स एंड काफ राइजेस, काफ राइजेस, राइट, जो काफ को वो करने के लिए। Gradually increase the resistance as you become stronger. पहले थोड़ा थोड़ा करिए, and then you'll get stronger and stronger. तो आप उसको बढ़ाते रहो, ठीक है? Enough protein. Try to include a good protein source at each meal. बहुत लोग protein shakes भी लेते हैं ना? लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं eggs, fish, chicken, Greek yogurt or kefir. Oh, I just got some yesterday. A very dear friend of mine gave me some. So this time I'll make sure I'll keep them alive. Milk, dal, beans, tofu, ऐसे ऐसे चीज जो है प्रोटीन इसमें है. For many healthy older adults, roughly 1.0 to 1.2 grams of protein per kilogram of body weight per day is a reasonable target. Okay? People actively strength training may sometimes benefit from a little more, okay, protein intake. So don't forget your legs, strong thighs, hips and calves are particularly important because they help maintain balance, walking ability and independence. Acha. Vitamin D and calcium, important for bones and muscle functions. Vitamin D deficiency is worth discussing with your doctor, particularly if you get little sun exposure. अगर बहुत कम सन में आप रहते हो, तो आपका vitamin D कम मिलेगा, आपका स्किन तो बहुत फेयर हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई लाइफ नहीं लगेगा, ठीक है?
1: You look anemic.
0: Yeah, you look anemic. Yeah. Keep moving. That's why I have you as my co-anchor, you know, because keep moving. Walking is excellent.
1: What do you mean you got me? Why? Well, I didn't understand that, but...
0: That's all right.
1: Come on.
0: Keep moving. Walking is excellent for your heart and general fitness. But walking alone isn't usually enough to preserve maximum muscle. Combine it with resistance training. Okay? All right. Recovery matters. Muscles need rest, adequate food and good sleep to rebuild. अब रात भर बैठकर आप लोग जानते हैं ना, वो काम मत करो, ये पीना वीना थोड़ा हिसाब से भैया लो, बिकॉज ये सब बाद में बहुत तकलीफ देगा आपको. वन यूजफुल डिस्टिंक्शन, आई नो आई हैव गॉट अथॉरिटी ऑन इट बिकॉज मैं शायद एज में आप कुछ लोगों से ज्यादा हूं. What useful distinction? You usually talk about maintaining muscle mass and muscle strength rather than muscle density. And you don't need very heavy weights, okay? Consistent resistance that makes the last few repetitions feel challenging can be effective. Okay? So that is for your muscle mass, if you're losing your muscles. आपको एज में, ओल्डर एज में क्या क्या करना चाहिए. रेजिस्टेंस, कीप ऑन पुशिंग द वॉल, सी इफ यू कैन पुश द वॉल अवे. ओके, चलो अब एक गीत सुनते हैं दोस्तों. नंबर है 04300031701 या 3279-1701. ओके.

0: और दोस्तों चोको देखो, अब चलते हैं एक सुपरहिट 1966 की सुपरहिट फिल्म। मैं फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा।
1: क्यों?
0: आप लोगों का काम है हमें बताए कौन सी फिल्म है। डोंट लुक इट अप, डोंट सर्च इट, जस्ट टेस्ट योर मेमोरी एंड सी राइट एंड सेंड अस अ मैसेज राइट। ये गाना है, एक बहुत जबरदस्त गाना है आवाज में दोस्तों। आवाज दी है रफी साहब और आशा भोसले जी ने। म्यूजिक आदि बर्मन, यानी यू नो पंचम राइट, और लिखा है मजरू सुल्तानपुरी। इसमें खास बात क्या है दोस्तों कि जब शमी कपूर ने पंचम दास से ये जो चून है ना सुनी जब, तो उन्हें इतनी पसंद आई ये जो गाना गीत ये चून कि वो खुद उठकर डांस करने लगे। रियली? एंड डू यू नो मोस्ट मूवीज वेयर शमी कपूर एक्टेड,
1: Yeah.
0: They never did the dance. He used to come up with his own dance style. And the day he didn't do it, like something happened, he wasn't up to it, they would get very frustrated. Why is he not doing it?
1: Yeah.
0: So, chaliye dosto.
1: He was just a natural.
0: Yeah.

0: वाणी की एक बहुत इमोशनल फिल्म है, देखने में से नहीं लगता लेकिन बहुत इमोशनल है। क्यों इतना इमोशनल है? ये सिर्फ हिप्पी कल्चर और फेमस गाना गाने दम मारो दम की कहानी नहीं है दोस्तों। असल में ये एक भाई और जो बहन की कहानी है ना, रिश्ता, हाँ, जो बचपन में अपने पेरेंट्स के सेपरेशन की वजह से राइट बिछड़ जाते हैं
1: जी।
0: The parents separated ना in this movie.
1: Yep.
0: देवानंद, जिसका नाम प्रशांत का रोल करते हैं, जो सालों बाद अपनी जो बहन जसबीर उनका नाम है को ढूंढते हुए काठमांडू पहुंचते हैं। She is looking for his sister ना। वहां उन्हें पता चलता है कि जसबीर अब जेनिस के नाम से रह रही है, अपना नाम बदल दिया उन्होंने। जीनत अमन ने, आई थिंक दैट्स व्हेन ही फाउंड जीनत अमन, डिडंट ही? यस, ही वाज द वन। या जीनत अमन ने जेनिस का रोल किया था। वो हिप्पी कल्चर और ड्रग्स की दुनिया में खो चुकी होती है, ठीक है। तो प्रशांत की जो कोशिश होती है कि जो अपनी बहन को उस दुनिया से बाहर निकाल कर और उसे फिर से फैमिली के करीब लाएं, ठीक है। इसीलिए फिल्म के कलरफुल सॉन्ग्स के पीछे एक्चुअली एक बहुत गहरी कहानी है, फैमिली सेपरेशन, लोनलीनेस, ड्रग्स और फिर भाई बहन का प्यार, ठीक है। तो उसी फिल्म से एक गाना चुना हूं, सुनते हैं दोस्तों।

कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: यार राहुल तेरे केस का क्या हुआ
2: यार आई एम सो वरीड एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट अतुल भारद्वाज जी है ना उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है क्रिमिनल लॉ डोमेस्टिक ऑफेंस ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस फैमिली लॉ इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है एंड द बेस्ट पॉइंट दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट
2: थैंक्स अटनिया आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: जी हाँ दोस्तों रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं और आपको बता दूं हमेशा याद दिलाता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद में आप सताक्षी के साथ रहेंगे और फिर 11 बजे से संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम 3 बजे से निविया के साथ ठीक है कार्यक्रम सुनते रहे दोस्तों और कल सुबह कौन है
4: नीलम नीलू
3: आज सुबह मैं उठा
4: आज सुबह जब मैं उठा Oh, now the words are gone.
3: Yeah.
4: The tune is even gone. आज सुबह जब मैं उठा Okay, carry on. Sorry to interrupt
3: you. So, I didn't know whether it was Wednesday or Thursday.
4: To be honest, me neither.
3: I said, come on, what is it? So, I had to look at my watch camera. I mean, my
4: phone.
3: To figure out aaj kaun sa
4: din hai. Yeah, but then I remembered, hang on, it's bin day for me. So, I had to get up and go running.
3: That's how I also thought that yesterday was a bin day. Yeah.
4: Okay.
3: Right?
4: Well, isn't it Tuesday night? People put the bins out. Yep,
3: that's right. Why I got confused the day
4: the last
3: week before.
4: Yes.
3: Because he put it out on Monday.
4: Out, yes, yeah, yes, so. yes.
3: Anyway, oh my goodness.
4: Imagine how we tell. And then Shadow wanted to walk towards, you know, like this longer walk.
3: Yeah.
4: And I said, Shadow, it's Thursday. Tomorrow we will take the longer walk. And guess what? He just carried
3: Maybe
4: on walking straight.
3: Maybe he got confused too.
4: Yeah, I think he was.
3: Yeah.
4: Because he was trying to pull me to the left and I said, no. Move to the right.
3: All right, here we go.
4: Little to the left and a little to the right.
3: We can play that.

0: रे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: ओहो, मैं तो तेरी बाँह पकड़ ली, ओपन खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे,
1: खुल्ला प्यार करेंगे।
0: लेकिन
1: लेकिन
0: लेकिन दिल में प्यार है लेकिन जुबान जुबान पर लेने की हिम्मत नहीं है।
1: ओह
0: समझा, तो बताइए कौन सा गीत?
1: Why डरपोक।
0: लीजिए सुनिए दोस्तों, बहुत ही प्यार।

0: मेरा प्रेम पत्र है। देखिए किसी ने लिखा मेरे पास, उन्होंने लिखा कि हैव टू बी केयरफुल दिस डेज, कुड बी सूड फॉर एक्सप्रेसिंग योर लव,
1: व्हाट
0: हैव वी कम टू, नो वन कैन से आई लव यू।
1: हाँ, कैन वी
2: कह दूं तुम्हें,
0: वेरी डेंजरस सिचुएशन नाउडेज,
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
3: क्या है,

0: और देखिए दोस्तों, वक्त आ गया है जब हमें आपसे विदा लेना है, और आप सभी ने साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। तो चलो दोस्तों, हम यहाँ से निकलेंगे और कुछ
1: और जस्ट वांट टू विश एवरीवन हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।
0: यस यस,
1: एंड आई वांट टू विश ऑल द फादर्स आउट देयर हैप्पी फादर्स डे फॉर संडे।
0: ओह, संडे इज फादर्स
1: डे, एंड ऑल द मॉम्स दैट आर स्टेपिंग इन एज डैड्स, happy Father's Day to you too.
0: Father's Day to you.
1: Have a beautiful weekend. Enjoy the river fire and the fireworks.
0: Yeah. और एक बहुत ही प्यारा गीत है दोस्तों। अब भी आप भी जाइए, दीवाना होकर खोजिए अपने मंजिल को। मिलते हैं। मैं संडे को मिलूंगा।
1: और मैं सोमवार।
0: I will miss you on Monday.

0: नशे से चढ़ गए।
1: कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा बोले। जी हाँ, कलियों के घूंघट खुल गए हैं। और देखिए, सिर्फ कलियों ने घूंघट नहीं खोले हैं, भंवरे नहीं बोल रहे हैं भाई, एक नई सुबह दस्तक दे चुकी है हम सबकी जिंदगी में। जी हाँ, और ये नई सुबह, ये नया आगाज है आपके सपनों का, आपके अरमानों का, और आपके बीते दिन के जो फेलियर्स थे उन्हें भुलाने का, क्योंकि आज आगाज है नया। और अंदाज भी बिल्कुल नया रखिए, अपने आप को सजाइए, संवारिए और बेहतर बनाइए, और बताइए दुनिया को कि आप बहुत स्पेशल हैं, और जो कल नहीं हुआ वो आज जरूर हो सकता है। तो चलिए जी, बात पर शुरुआत करते हैं इट हैपेंस की। रेडियो प्रसवानी 1701 पर, और आगे बढ़ते हैं अगले ट्रैक के साथ।

एटेपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी पर दोस्तों, आपके साथ साक्षी है और गुड मॉर्निंग कहूंगी एक बार फिर से आपको भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ उनके लिए भी दिन बहुत ही खास है जिनके लिए आज का दिन स्पेशल है। जी हाँ, जन्मदिन जिनका है भाई, आज बर्थडे बेबीज हैं, आज के दिन उनका बर्थडे है और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हम विश करेंगे, तो भाई हम कैसे ना विश करें। तो भाई जो भी आज इस दिन के हकदार हैं यानी जिनका जन्मदिन है, उन सबको जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। खिलते रहें आप, मुस्कुराते रहें आप, गुनगुनाते रहें आप और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहें आप। जी हाँ, किसी भी मोड़ पर जिंदगी के थकिएगा नहीं, हारिएगा नहीं, मुस्कुराते मुस्कुराते जिंदगी के हर फेस को पार करते रहिए। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह की

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह,

0: पता बताना
1: अर्शाद लॉयर्स माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स ऑफिस 5 1644 लोगन रोड माउंट ग्रेविट एम्पल पार्किंग कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171 वेबसाइट www.arshadlawyers.com वी प्राइड आवरसेल्व्स इन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विस
2: यार राहुल तेरे केस का क्या हुआ
3: यार आई एम सो वरीड I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है क्रिमिनल लॉ डोमेस्टिक ऑफेंस ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस फैमिली लॉ इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है एंड द बेस्ट पॉइंट दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट
3: थैंक्स अटर्नी यार आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बहुत शोर शराबे के साथ रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ बड़ी साइलेंटली रिलीज होती हैं। अभी रिसेंटली थिएटर्स में एक मूवी चल रही है हनुमान अंश। जी हनुमान अंश, ये फिल्म जो है इसने बहुत शोर नहीं मचाया और शुरुआत तो ऐसी थी कि इसे डिक्लेयर भी कर दिया गया कि भाई फ्लॉप नहीं, ये तो डिजास्टर मूवी है, सुपर फ्लॉप होने वाली है और चलेगी नहीं। नतीजा भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही रहा कि लोग थिएटर्स में नहीं गए और एक तो बहुत ही कम बजट में ये फिल्म बनी, तो बजट भी नहीं निकाल पा रही थी, जितने आप बजट इस फिल्म का था वो भी नहीं निकल पा रहा था। लेकिन सडनली लोगों ने इसे देखना शुरू किया और जो लोग देख रहे हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू किए। तो भाई हमने भी कल सोचा कि चलो ये पिक्चर मिल गई है तो इसे ज़रा देख लेते हैं, घर पे देखा हमने। लेकिन देखने के बाद जो है वो ये समझ में आया कि यार ऐसी फिल्में भी बनती हैं, मतलब कोई शोर शराबा नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, उसके बाद भी इतनी लाजवाब फिल्म है कि कई जगह आपको गूज़बम्स आते हैं। और कितना भी स्ट्रेस हो जिंदगी में, कितनी भी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो, जब बैकग्राउंड में इसके गाने प्ले होते हैं ना तो आपको गजब की शांति देते हैं। सो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि आपको हनुमान अंश देखनी चाहिए, स्पिरिचुअल मूवी है, हिंदुओं की मूवी है, ना बाबा बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, एक बार ये फिल्म देखिए। ये फिल्म आपको अंधभक्त बनना नहीं सिखाती है, आपको साइंटिफिक होना भी सिखाती है, साइंस से भी रिलेट करती है, जोड़ती है, और आपकी अपनी बुद्धि किसी भी इस प्रॉब्लम में कितनी चलनी चाहिए ये इस बात को भी आपको दिखाती है। तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और मतलब मैं तो ये कहूँगी कि आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी होगी इस तरह की फिल्म, सो ज़रूर एक बार इसे देखें। आप जहाँ से इसे अरेंज कर सकते हैं, थिएटर्स में अभी लगी हुई है, आप अगर थिएटर्स जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा ही सही इसे देखने बैठें ज़रूर, हो सकता है कि मेरी तरह आपको भी अपनी कुर्सियों से बांध दें। सो बड़ी बड़ी प्यारी और लाजवाब और बड़ी अलग सी फिल्म है सच में। तो चलिए फिलहाल आपके लिए आगे बढ़ते हैं इस मॉर्निंग एक अगले ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए और हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी 1701 AM। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

कभी कभी ना हम लोगों को मॉर्निंग विश करते हैं, इवनिंग विश करते हैं, गुड नाइट भी विश करते हैं, मतलब ओकेशनली भी विश करते हैं। और ये इसलिए नहीं होता कि हम चाहते हैं कि वो हमें रिप्लाई करें, जब हम मैसेज करें तब वो हमें रिप्लाई करें। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आपने मैसेज किया है तो उन्हें रिप्लाई देना जरूरी है, बट हमेशा हम ये नहीं चाहते। यू नो, हम ये चाहते हैं कि कभी कभी बंदा ना हमारे मैसेज के बिना भी हमें रिप्लाई करे, उसको भी हमारी याद आए और वो अपनी तरफ से हमें मैसेज करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जब ऐसा होता नहीं है तब हमें ये रियलाइज होता है कि यार हम जो फील कर रहे थे उसके लिए वो बंदा तो हमें फील ही नहीं कर रहा था, है ना। जो हमारे अंदर उसकी इम्पोर्टेंस थी उसके अंदर हम उतने इम्पोर्टेंट थे ही नहीं, उसकी जिंदगी में शायद हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। और फिर धीरे धीरे ये डिस्टेंस बनना शुरू होता है, हमें अकल आती है कि भाई जबरदस्ती हम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोल के उसका मोबाइल फोन और उसके मोबाइल फोन में मैसेजेस जो है इनबॉक्स में मैसेजेस जो है वो भर रहे हैं, है ना। हाँ, तो आपके साथ भी हुआ है कभी ऐसा? अगर हुआ है तो बताइएगा। आइए फिलहाल आगे चलते हैं एक और ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए हमारे साथ इट हैपेंस में, ये अगला गाना, और सुनते रहिए आपका अपना ब्रेकफास्ट वाला शो मेरे साथ।

0: Bell, better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस. आइए बढ़ते हैं गानों की हैट्रिक की ओर. जी हाँ, तीन बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है सताक्षी. और ये गाने जो है ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं. बॉलीवुड के वो गाने हैं, हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, हमारे साथ सुनते रहिए गानों की हैट्रिक. ये पहला ट्रैक है आपके लिए.

इन बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

H1N1 या फिर COVID-19। देखिए इस वक्त दोनों ट्रेंड में हैं बिल्कुल, और COVID-19 के बाद ये पहला मौका आया है फिर से जब लोग वापस मास्क पहनने पर मजबूर हो गए। हाँ तो अब एक तो यार दोनों के सिम्टम्स सेम है, सर दर्द, बदन दर्द, बुखार, खांसी, सब कुछ, गले में खराश, है ना। अब ऐसे में लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि उनको स्वाइन फ्लू हुआ है या COVID-19 हुआ है, पहला सवाल। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि क्या दोनों साथ हो सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, N1H1 यानी कि स्वाइन फ्लू और COVID-19 दोनों साथ हो सकते हैं। देखिए दोनों ही बेसिकली हवा के जरिए जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो दूसरों की बॉडी में जाते हैं, और ये सिम्टम सेम होने की वजह से ये दोनों एक साथ भी अटैक कर सकते हैं, जिसे डबल अटैक कहा जा रहा है। सो बहुत जरूरी है बचना भाई। एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मास्क वास्क निकाल लीजिए या खरीद लीजिए, है ना, और पहनना शुरू कर दीजिए ताकि आप बचे रह सकें। और अगर फीवर आता है या COVID-19 या स्वाइन फ्लू के आपको सिम्टम्स नजर आते हैं तो जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मामला जान का है ना, छोटा मोटा नहीं है। तो ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, फिर से वही बात कि सेफ्टी ही आपकी जिंदगी बचा सकती है, तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। आइए आगे चलते हैं, एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस, और बेहतरीन मॉर्निंग ट्रैक के साथ कुछ बेहतरीन बातों का साथ।

कुछ लोग ना जब हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं, या कोई ना परेशान करता है तो वो दूसरों से मैसेज करके बताते हैं, अपने ग्रुप्स पे शेयर करते हैं। कई तो आजकल भाई सोशल मीडिया स्टोरी लगा देते हैं, आज इसने मुझे ये कहा, या कुछ शेयर लिख देते हैं तो सामने वालों को पता चलता है भाई इसको कुछ हुआ है। लेकिन कुछ लोग जरा इनसे अलहदा होते हैं, जुदा होते हैं, वो जब हर्ट होते हैं तो वो लोगों से डिस्टेंस बना लेते हैं, कॉल्स मैसेजेस कम हो जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सीखा है कि अपनी दिल की बात को, अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करना है, या जब हर्ट होते हैं तो कैसे सोशल मीडिया पे दिखाना है। बल्कि जो दिखाते भी है उनको लगता है कि यार ये क्या है, अपने आप को इतना एक्सप्रेस कौन करता है। तो हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं और उनको समझना बहुत जरूरी होता है ऐसे वक्त में। अगर आपका कोई बंदा, आपका कोई फ्रेंड या फ्रेंड सर्किल में कोई आपसे दूर हो रहा है या ग्रुप से दूर हो रहा है, तो समझिए, जाकर उससे बात कीजिए कि कहीं उसे कुछ पिंच तो नहीं कर रहा है, कहीं उसे कुछ हर्ट तो नहीं कर रहा है, या कुछ हर्ट किया तो नहीं है जिसकी वजह से उसका ऐसा बिहेवियर हो गया है, है ना। आइए एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो ग्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस, ये रहा अगला ट्रैक आपके लिए।